मेरा स्वामी किस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जन नानक धूड़ मंगे

जन नानक को हर बख्श ले हो, जन नानक को हर बख्श। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाहा, हम क्यों कर जबे आनिया हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संग तरा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला, हर कृपा कर सुन बेनती, हर कृपा कर सुन बेनती, हम पापी किरम तरा।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूढ़ नहीं पायो, भिन्न भिन्न सब हो पर जाना, एक रूप किन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध हाथ ना आए। नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर इह जग मो करा, अमरदास पुन नाम कहायो, जन दीपक ते दीप जगायो, जग मरदान सवा वो आवा, रामदास तम गुरु विजय पूर्व देवड़ा, जिसकी वस्त किसे घर आवे, बैठा स्वर्गी पादशाह, रामदास सतगुरु। जग तो मुन ध्यान धरे फिरत सकल जग, कबहु को पावे आत्म प्रकाश को, वेद बाणी सहित ब्रंच जस गावे जग को, शिव मन कहना तजात कबिलास को, जांको जोगी जती सिद्ध साधक अनेक तप, जटाजूट पेख किए फिर उदास को, सो तिन सतगुर सुख भाए कृपा।

नाम मिले मन तृप्ति है बिन नामे त्रिग जीवा। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास, और किस विट्टो चौखनिए मैं नाम करे परदास। मेरे प्रीत नाम।

गुरु साजी नवाजी सात सिंह जीओ राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न दी सेवा कर रहे हैं। श्री राग दा जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनु असीं ऋषभ कहने आ, सात और बाद दूसरा स्वर रे है, उसनु ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनु पा कहने आ, सारे गामा पा पंचमा सुर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन्हां दोनों सुरां दे सुमेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ है, जिस तरह

0: शासन है पूरे सतगुरु पास।
1: जो पड़ताल है, जिसनु पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है, उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना। जिवे हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इसनु असी दीप चंदी कहने हैं, 1400 मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इसनु पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

0: अमृतसर सतगुर सत भक्ति जितना ते कौआ हंस होवे
1: सतगुर
0: अमृतसर की अमृत गुर अमृतसर नवधाया सब जाते।

श्रवण करो। भाई बलबीर सिंह जी ने रागी जते पासों शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।

राकांडा महला पंजवां बिसर गई सब तात जब ते साध संगत मोह पाए रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगले

गाना सगल रंग हम गवण आई जो बावनी नव वरमान होए मस मस साधु दे भाई सामने रव रया रव रया रव रया आ प्रभु कहे सब में रव रया।

0: श्रवण करो।
1: पहला चार ताल है, फिर तीन ताल है, फिर दो ताल है, फिर एक ताल है।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब मेरा रे राग जोग

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौस, चंद्र कौस, सूर्य कौस, जोग कौस, चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात्पराई, जब दिशा संगत में पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो प्रभ की नो सो भल मान्यो इस मत साधु दे पाई, सब मेरा रहे प्रभ लिख गए, देख देख नानक दिखाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने ए तराना जेड़ा है ए अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इथे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहन लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा सारे सामने ना कहा, कहिंदे असल वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ, कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ, इह तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी इह सानूं लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी ही नहीं। मैं कहा जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को ही दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नमस्कार की, इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मान तो तराना श्रवण करना, साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ विद्वान ने कभी आप दर्शन करना।

चार पंक्तियां हैं। धागिरदी धर्म दृष्टांत धागिरदी देम दिरना धागिरदी धर्म दृष्टांत धागिरदी देम दिरना धागिरदी वृक्ष

मेरे जीवड़िया परदेसिया कि पवे जंगले राम कि तू पवे जंगले राम सच सहम मन वसे कि पासे जंगले राम।

एतन होती खाक में माणी गोर करे, एतन होती खाक निमाणी गौर करे। अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, मनो मचंदड़ी जे जाना मर जाइए कुम न आइए, झूठी दुनिया।

पुड़ियाल बांधी दे दिल से चार को पेखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विचों जाए पाए।

गगा गोगन कुंद्रवो सास सास जपनीत काम सासा देता बिल मना करियो मीत।

चलने चलना हार बिचारा ले मनो, चलने चलना हार बिचारा ले मनो। गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठी नो, जिमें पूछे

कहे नानक चेतरे मन जीड़िया परदेसिया जीड़िया परदेसिया जिस वक्र को लैन तो आया राम नाम संतन कर पाया तज अभमान लिया मनमोहन राम नाम हृदय में तो लाद खेप।

छिन छिन और बेहात है, फूटे कर जो पानी सो दिन आवन लागा, सो दिन आवन लागा।

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे कह कबीर सूरे प्राणी कैद कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो।

धारंग मजे ब्रह्म तार तत हर को उपजे राग सारंग उकडे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंदानंग।

गुरु गरीब निवार किस ही जोर हंकार बोलन का किस ही जोर दीवान माया का मैं हर बिन टेक धर और नकाई

सच एक महला पहला नाथ जन ओंकार हो के तेरा अमरवाल केतिया खन कहानियां केते वेद विचार के चरण नचा मुख के गमन पो।

सर्व समय सर को परत पार पोखत है जल में थल में पोखत है जल में थल में पल में कल

अज श्री अबचल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर दशमेश पिता दे चरणा च बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हैं, हे सतगुरु, सिख पंथ की सिरजना करन वाले खालसा पंथ नू रचनहार साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख की रहत नू आप दर्शाउणा करो। गुरसिख का कर्म की है? सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने भाई नंद लाल के सवालों का

पहला नियम है गुरसिख दा कि गुरु की संगत करनी, सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके। ते जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउन वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सत संग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं। गरीब नवाज साहब फरमान कर

गुरु का दिता होया निशान केसा दे अंदर कंघा रखना ते दोनों वक्त केसा दी सफाई करनी कंघा फेरना दस्तारा जड़ा है इसनू उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नू फिर सजाउना टोपी जी सिर दे उपर धर लैनी ए गुरसिख दा कर्म नहीं कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना ओ रसना पवित्र होनी चाहिए ओ मुख पवित्र होना चाहिए भाई नंद लाल जी गुरसिख दोनों वक्त कंघा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नूं पवित्र रखे।

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर देन। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा ताने कठा करदा, ते जेड़ा गुरु नूं दसवंद नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैन उसनू मां भैन दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैन जो आवै संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करै क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैन नू मां भैन ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उसनू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है वह सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू इको जिहा प्यार देवे।

सात जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिनों तक बन्नी रहनी रोजाना उस नु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकदे। जे अपना दस्तारा अपने हाथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़ियां दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते सी कोड़ा हो जांदा। होए सिख सिर टोपी तरै सात जन्म कुश्ती।

एक वाहिगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते होए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। आई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे, जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूबहू उसे तरह लिखे जान, बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क पा

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे। ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछ। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नवाज सचे पातशाह ने आने वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूरने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा,

खालसे नूं पहनाए ने, पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर, पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे, वर्दी होवे, उन्हूं लाजमी है वी जदों ऑफिस विच जावे, जदों कम ते जावे, जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे, उदों ओ दित्ती हुई ड्रेस नूं पहने। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं पंज ककार बख्शे ने, ते गरीब नवाज कहिंदे मैं इह बर्दाश्त नहीं करांगा वी मेरा गुरसिख पंजां ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे, शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे वी शस्त्रहीन ना हो। शस्त्र हमेशा पास रखे, शस्त्र ते शास्त्र, शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते, ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा सी। शस्त्रहीन ए कबू

जुआ असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इस दी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशां खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदिक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे, ओ जवान गिणिया जाएगा, ओही असली मेरा जवान।

गुरु के सिखां कोल धन अपार है ते फिर जिस कोल धन हुंदा है उसकी कीर्ति हुंदी है जस हुंदा है। कीर्ति नूं सुन के गुरु का सिख अहंकार विच ना आवे। सुख गुरु ने दिता है सुख नूं वेख के फुलिया ना फिरे औगण ना करन लग जे। धन कीर्त सुख राज बढ़ाई युवती जित सुत विद्या बहु पाई। दूजी है विद्या विद्या पढ़ के विचारवान वड्डा हो जांदा है। किसे अहुदे ते पहुंच के गुरु ना भुल जावे। किसे अहुदे ते चंगे ते पहुंच के गुरु की सिखी ना भुल जावे। युवती सुत विद्या वो भाई ए सब दात गुरु की जाने। ए सारियां दियां सारियां गुरु की दातां जाने। दातां जान के मन अंदर रंचक मात्र भी अभिमान ना आवे ना अभिमान करे ना अहंकार करे। गरीब नवाज साहब सचे

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा, गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे, पवित्र होवे, ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन, रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै, रहत बिना सुख कबू ना लहै। कदे भी सुख उसनू नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कुकर्म कमावत, पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाइया दंड दिता जांदा है। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ओनू कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो ओनू छेक दिता जावे जेड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह दा प्यारा सिख, इसने ये रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया, भाई देसा जी ने लिखिया, बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दिते हुए इस रहतनामे दे। गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी दे वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज फरमान

Belki hissedilir. Guru Maharaj'ın longing present karte hain, longing pesh karte hain, ek pyaas, zarurat, ek tadap ka zikr karte hain, aur aate hain man loche har milan ko, mera man परमात्मा नु मिलना लोचदा है, इसके अंदर बड़ी भारी लोचा है। जदों परमात्मा नु मिलन दी जीव के अंदर भुख लोच प्यास पैदा हो जाए, समझो उसके अंदर बाकी तमाम चीजां ले वैराग हो गए। वैराग का अर्थ के बाकी तमाम चीजों के विचों वो डिसइंटरेस्टेड हो गए, ही हैज नो मोर इंटरेस्ट इन वर्ल्डली थिंग्स। उसके अंदर एक ही प्यास है कि वो उसने जो बनाने वाला है, सारी सृष्टि में साजन वाला है, जो उसने पानी दिंदा है, ऑक्सीजन दिंदा है, धरती दिंदा है, अनाज दिंदा है, वो कौन है? जिसने इसने बनाया है वो कौन है? वो अपने असल हर जी माता हर जी पिता जो सपना का पिता माता है उसनु मिलना चाहता है, और उस अवस्था दे विच मन दुनिया वालों वैरागवान हो जाता है। दुनिया वालों मन जो है वो उदास हो जाता है, भाव उसमें कोई और किसी चीज की रुचि नहीं रह जाती, उसकी रुचि बदल जाती। बाबा जी आखते हैं इस अवस्था से जाके जो जिज्ञासु है उसकी रुचि बदल गई है, उस मन की अवस्था यह है कि मेरा मन एक ही प्रिया मांग है। मेरा मन जो है वो एक उस प्रिया नू अपने प्यारे नू ही मंगता है, होर किसी चीज के नाल वो सैटल नहीं हुंदा, तृप्त नहीं हुंदा। मेरा मन एक ही प्रिया मांगे, मन लोचे हर मिलन। मन जो है वो दिन रात उस अकाल प्रभु दे दीदारां लई उस दे मिलन दे लई बेचैन रहिंदा है, अते अंदर एक सवाल पैदा रहिंदा है, क्यों दर्शन पाईया, किमें उसका मैं दर्शन करां, किमें मैं उसनु मिलां। प्यास इतनी गहरी हुंदी है, मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बोलाई है। इसके विच ये आख्या है कि ऐ मेरे साहिब, जे मैनू एक बिंद एक पल एक छिंदे वास्ते भी तू बुला लवे, मैनू मिल पवे, मैनू मौका दे देवे, तो मैं समझांगा मैं लखां पा लें, मैं लख विड़ते साहिबा, मैं सब कुछ पा लिया, मैं लखां करोड़ां हासिल कर लिया, जे मैनू एक मोमेंट दे वास्ते भी अपना मिलन दे दवें, अपने दीदार दे दवें, अपने आप नू मिला लूं, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख लिया है,
किसी भी चीज तृप्ति नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, जॉय नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, फेक है, मोमेंटरली है, अते दुख का कारण है। दुनिया का हर सुख जो है वो नाल ही नाल दुख भी दिंदा है। इस करके कहते हैं मैं चारे कुंडा पालिया, मैं हर थां ते भाव, मैं सब कुछ देख लिया है, तुद जेवड़ ना साइया, ऐसाई तेरे वर्गा कोई नहीं है। मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, एक प्यास है, एक उमंग है, एक तमन्ना है, एक जाचना है, एक लॉन्गिंग है कि तेरे दर्शन मैनू किवें हो। शब्द का पहला हिस्सा जो है उस दे विच महाराज जी एक जिज्ञासा पेश करते हैं, अते ऐसा जिज्ञासु महापुरखां दे संतां दे पास आके बेनती करता है। उस बेनती नू आओ गाइए, दिलों गाइए।